माना एक न चेतस मूड मना हर बिसरता तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म पहया प्रणवत नानक तिन की शरणा।

रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहा हमारा अपना जान करो परत पारा हमरे दुष्ट सब तुम काव हो आप हाथ द मोहे बचाव हो सुखी बसा मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर द करी सब बैरन का आज संगरी है पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्ह छाड़ कोई अवर ना त्याहूं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है आप हाथ द मुझे बरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करी है हो रक्षा राख ले हो मोहे रख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बेसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो खट खट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना कट कट के पट पट की जाना जब बुद्ध करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह पारा जब करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलता देह तर सब हूं जेते बदना श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी भूज उचारा तुम सब ही ते रहत निरालमा।

तोहे तेति तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूपा अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहूं फूला राजा हुआ बैठा कहूं सिमटा पयो संकरे कैठा सिगरी श्रेष्ठ देखाए चम पाव आद जुगाद स्वरूप सुन्यम पाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे पुरख जमन पग परे त्योहारे तिनके तुम संकट सबटारे।

दृष्टा तन जाहि निहरिहो ताके तापा तनक मह हरिहो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई।

हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस तुज जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसा व्यापत कोई। अड़िल्ला सुना गुंग जो याहे सुरस न पावई सुना मूड चित लाए।

चौपाई संबता सत्रह सहस प्रणिज अर्ध सहसा फुन तीन कहिज भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर सुतद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रो पखियाने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबादे।

प्रथम मनाऊं किसन बेसना कबहू नह त्याऊं कान सुने पहचान न तेन सो लिव लागी मोरी पागेन सो महाकाल रखवार हमारो महालोहो मैं किंकर थारो।

हमारे मरिया देग तेग जग मैं दो चला राख्या मोहे और नंदला तुम मामा करहो सदा प्रतपा।

हाथो बारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को त्याना बहर करो कविता बिद नाना कृष्ण जथा मत।

सचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे।

रल के पढ़ ले, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है। नमस्कार दंडौत वंदना अनक बार जाऊं बारे। मन करके भावना करके सतगुरु के चरणों में जुड़ के ये अरदास करिए सतगुरु, ये मेरे श्वास ये मेरा जीवन तुहाडे लेखे विच लग जावे। एक भी श्वास मेरा तुहाडी याद तो बिना तुहाडे नाम तो बिना बिरथा ना जावे, क्योंकि पता नहीं कदों सुनेहा आ जाना है तो इस संसार नू छड़ना पै जावे। फिर मन विच पछोतावा ना रह जावे कि कल्ली दुनिया दी माया जोड़ ली, ते ओ दुनिया दे विच जो करन वास्ते आया सी ओ नहीं कीता, नाम दी कमाई नहीं कीती, नाम दा धन नहीं जोड़िया। सतगुरु जी की कहंदे ने, साथ ना चाले बिन भजन, बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानक। ओ कीती होई नाम दी कमाई सतगुरु जी कहंदे नाल जानी है बंदिया, इस करके जपना कर सतगुरु दे शुकराने विच आ जा, एक कीमती समा तेरे हथों निकल ना जावे।

दर्शन परसे गुरु का जन्म मरना दुख जाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरना दुख जाए सतनाम

कथना कथी नावै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक बेगसा वे प्रवाहो। साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार। आख है मंग है देह देह, दात करे दातार। फेर के अगै रखी है जित दिसै दरबार। मोह के बोलन बोली है जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच ना वड्याई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवै जानी है सबापे सचियार। थापिया न जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए।

अनपूतांगाबा पंगत्मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकामात दुत प्रचंड मित गता खंड आलिस है कर्म आदृश है धर्म सर्वा प्रणाडंड बाडा चाचरी छंद त्व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरियं करियं निरनामे अकामे पोजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र दान्या चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये जन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी स दिश दृश कृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आ छज देसा के आ भिज पेशा के आ गंज कर्म के आ पंज परम के आज लोक के आदित सुक के वधूत बरना के विभूत करना के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक बरना के सर्वा भरना के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूप के अनुभव अनुप के आद देव है के आप भेव है के चित्रं विहीन के कदीन के रोजी रजा कै रहीम रिहा कै के पाक बेअब हैं के गैबल गैब हैं के अफवल गुनाह हैं के साहा अनुसाह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहंद हैं के राजक रहीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वं कली हैं के सर्वं दली हैं के सर्वत्र मान्या के सर्वत्र दान्या के सर्वत्र गौना के सर्वत्र पौना के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र पोखा के सर्वत्र त्राणा के सर्वत्र प्राणा के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मान्या सदैवं प्रधान्या के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पाना के सर्वत्र माना के सर्वत्र इंद्रा के सर्वत्र चंद्रा के सर्वं कलीमा के परमं फहीमा के आकल अलामा के साहिब कलामा के हुसन उल वजू हैं तमाम उल रुजू हैं हमेशल सलामा सलीक उत्मदामा गनीमल सकस्ता गरीबल परस्ता बिलंदल मकाना जमीनल जमाना तमीजल तमामा रुजूल निदाना हरीफल जीमा रजायक यकीना अनेकुल तरंग हैं भेद हैं भंग हैं जीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सोजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं भेदी नूप हैं समस्तो प्राज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं गाध हैं नूप हैं ओं आद रूपे अनाद स्वरूप नंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सुसर्वानुराग त्रिभुक्त स्वरूप हैं छज हैं छूत हैं के नरकं प्रणास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुक्त स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुक्त प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं परजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग हैं नंग हैं पेख हैं लेख हैं परम हैं कर्म हैं नाद हैं जुगाद हैं जय हैं बै हैं पूत हैं तूत हैं नास हैं उदास हैं तंद हैं बंद हैं अपगत हैं विरक्त हैं नास हैं प्रकाश हैं निश्चिंत हैं

जाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, जात हैं, जाद हैं, चप्रछंद प्रसाद सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं सर्वं कर्मं सर्वं कर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे नंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रा न पुत्रा न सत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्री कहें मितो मीक हैं सदैवं प्रभा हैं जय हैं जा हैं भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनुल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकन हैं हिरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं गंजुल गनीम हैं रजाय करहीम हैं समस्तुल जोबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं प्रणास हैं बहस्तुल निवास हैं के सर्वुल गवन हैं मेसुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परम परमेश हैं समस्तुल अदीश हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं मीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुरत जमाल हैं के अचलं प्रकाश हैं के मित्तो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के मित्तो पसा हैं के अजब स्वरूप हैं के मित्तो विभूत हैं के मित्तो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलं अनंग हैं के मित्तो भंग हैं मद भार छंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मदाम अरबरागंज हर नर प्रपंज आन गन प्रणाम मुन मन सलाम हर नरा खंड बर नरा मंडन पवनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम आन छे जग आंगा सुन भंग उपमा पार गत मित उदार जल थला मंड दिस विसा भंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास्त्रित तर तुरासा जान बाहु एक सदा हो ओंकाराद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबरा काल कर कर प्रणाम चित चरण नाम आन छे जगात आज जनाबात अन झन जगात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठटा पारा डीठ धर्म अत ढीठ कर मान ब्रण अनंत दाता महंता हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणाला है हर काला है खल खंडन है महमंडन है जगते स्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबारण है त्रित के तरण है जाके करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्या है सर्वनास्या है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड स है खल खंड स है परते पर है करुणा कर हैं अजपा जप हैं थपा थप हैं कृता कृत हैं मृता मृत हैं मृता मृत हैं करुणा कृत हैं कृता कृत हैं तरणी कृत हैं अमतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कृता कृत हैं मृता मृत हैं अजबा कृत हैं मृता मृत हैं निर्नायक हैं खलकायक हैं विश्वम पर हैं करुणाला हैं निरपनायक हैं सर्व पायक हैं पव भंजन हैं रगंजन हैं रिपतापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हर्ता हर हैं परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्म बास हैं जस के जस हैं पोजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
ਨਮੋ ਯੁੱਧ ਯੁੱਧੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਾਦੰ ਬਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬਾਂਕੇ ਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਨੰਗੀ ਅਨਾਮ ਅਕਾਮੇ ਏਕ ਅਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਦਾ ਅਜਾ ਅਲ ਅਪ ਅਬ ਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ ਅਗੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਭਖ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਭੇਖ ਨਾਮ ਅਕਾਮ ਅਗਾਹ ਅਟਾਹ ਨਾਥੇ ਪਰਮਾਥੇ ਅਜੋਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨਰਾਗੇ ਨਰੰਗੇ ਨਰੂਪੇ ਨਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰ ਅਪਰਮੰ ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੇ ਬਿਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੁਧਰਮੰ ਬਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਬਿਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਕਰੀਮੁਲ ਰਹੀਮੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੰਜਮ ਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾਂਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ ਦੋ

तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होर तुकता जिच हरस पला न पाए। हर रस पाए पला पिया हर रस बहुड़ न त्रिसना लागै, एहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिला जिस आए। कह नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत देखाया। गुर प्रसादी बुझिया।

विस्माद नाद विस्माद वेच विस्माद पेत विस्पाद भेद विस्माद रूप विस्मदंग विस्माद नांगे प्रजंत विस्माद पौन विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेडा विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद सल गह प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भो विस्माद संजोग विस्माद मजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिपत विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद राहा।

जोग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दम सूर शब्दम शूद्र शब्दम प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने वह नानक तक का दास है।

0: जिया इंद्र जियो सबकी जान ला सब तेरे बस तेरा करपला तेरा करण दुत कर मान मता तेज प्रणाप जर सर्व कला भरपूर जिस जत कथा नानक दासन दास
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महात दिवस रात दुदाई दाया केले सगल जगत चंगी।

अरुदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या कर है परानी। राम राय हो है बैद बनबारी, अपने संत ले हो उबारी रहाओ। माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही।